माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: वॉर टू का ये गाना अरिजीत सिंह निकिता गांधी की आवाज में, आवन जावन। इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज फ्राइडे द 25th ऑफ सितंबर की सुबह शबनम साही के साथ। हाउ अम्यूजिंग दैट राकेश रोशन वुडंट मेक द लिस्ट बिकॉज ही वाज द सन ऑफ संगीतकार म्यूजिक कंपोजर रोशन साहब, बट ऋतिक रोशन डज। निर्मल जी, आई एम एब्सोल्युटली लविंग योर मैसेज। आप कहती हैं कि नूतन भी फिल्म अभिनेत्री शोभना सामर्थ की बेटी थी। एब्सोल्युटली, आइडियली यू'ड लाइक अ सॉन्ग फ्रॉम आइदर बंदिनी और सुजाता, लेकिन आप कहती हैं कि अगर वो ना हो तो वो दूसरा जो खूबसूरत सा गाना है ना, छोड़ दो चल, उससे भी आप काम चला लेंगी। हाय, आपका प्लान बी भी कितना सुरीला है निर्मल जी। सैडली वी डू नॉट हैव बंदिनी और सुजाता। Perhaps it's time to do something about it on Sunrise.
1: Listener's Choice, brought to you by Star Plus.
2: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है। What a player!
3: Watch India's top 1% every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
4: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.
0: Regardless of the theme today, without even knowing the theme today, Sanjay in Wellingborough would have been happy with Aaj Ki Raat from Stree 2. Lucky for him that the film stars Shraddha Kapoor. Madhubanti Bagchi, Divya Kumar on the vocals. Good morning.

0: कलंक का ये गाना श्रेया घोषाल वैशाली माधे की आवाज में। वरुण धवन स्टार्स इन दिस फिल्म, ही इज अ स्टार किड बट हिज फादर इज अ डायरेक्टर, सो वी आर नॉट प्लेइंग दिस सॉन्ग फॉर हिम, आर वी? ऑफ कोर्स नॉट। वी आर प्लेइंग इट फॉर संजय दत्त, हु हैज अ ब्लिंक एंड यू मिस इट रोल, बट ऑफ कोर्स फॉर ऑल्सो द गॉर्जियस आलिया भट्ट। ना कन्हैया की लोरी, ना ही फागुन की होरी, मोहे कुछ दूसरा ना भाई रे, जब से नैना ये जाके एक धनुर्धर से लागे, तब से बिरहा मोहे सताए रे। दुविधा मोरी सब जग जाने, जाने ना निर्मोहिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। और अ ब्यूटिफुल ट्रेडिशनल वेलकम उलाश इन टोरंटो, मरिसा इन हाउंसलो, थैंक यू सो मच। Raj Sehgal in Battersea says, thank you very much for the great songs as always. Could you please shout out my wife's niece, Dipti? It is her birthday today. Birthday on a Friday. Fantastic. Dipti, have a fabulous day.
1: Back-to-back songs with Ambala Sweets. Celebrating serving the community for 60 years. Check online at ambala.co.uk for your nearest store. Or 1 hour click and collect available. Ambala Sweets, now open on Victoria Road, Glasgow.
2: Ambala, 100% vegetarian.
0: 07925 700272 is the number to WhatsApp me on. You've already sent me so many messages, so many requests, each of which could have been a part of this show if only we had more time. Now, on the other side, option A stars Vivek Oberoi. Kyun ho gaya na? And option B stars Sonam Kapoor and Ranbir Kapoor. Not this one, this one. Taken from the film Savariya. This was their debut film, remember? What is it going to be? Kyun ho gaya na ya Savariya? Aona ya thode badmash? AOB, WhatsApp me.

0: Patmos. Listener's Choice brought to you by Star Plus.
1: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, Stone Age से लेकर New Age तक तरक्की हुई है. What a player!
2: Watch India's top 1% every weekend at 8 PM on Star Plus and Jio Hotstar.
3: The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk.
4: आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो शबनम साही के साथ एंड द हिट ऑफ द आवर. दिस आवर कम्स विद अ लॉट ऑफ सैडनेस. वी'd लाइक टू टेक अ मोमेंट टू पे आवर डीपेस्ट रिस्पेक्ट्स टू सरदार इंद्रजीत सिंह खन्ना, हु पास्ड अवे हियर इन लंदन ऑन 20th September. अ वार्म एंड वंडरफुल मैन हु सो मेनी ऑफ अस मेट ऑन सेवरल ओकेजंस, हैड द प्रिविलेज टू मीट एंड हैव कन्वर्सेशंस विद. समवन हु लव्ड लंदन, विजिटेड लंदन ऑफ्टन, हैड सो मेनी स्टोरीज टू शेयर. Deeply mourned by his loving family, Preet Khanna and Manish Tiwari, Sandeep Singh Khanna and Ramandeep and Sarah Khanna. Lovingly remembered by all his friends, all of us here at Sunrise, those who knew and loved and respected Sardar Inderjeet Singh Khanna, we shall miss his warmth and his generosity. May his soul rest in eternal peace. Now, for those who wish to pay their last respects to the departed soul, please know that the funeral is tomorrow on the 26th of September at 10 AM, and this will be at Golders Green Crematorium on Hoop Lane.

के अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।